0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
5: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155. सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islin.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
2: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
1: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं. द स्टेज इज सेट,
2: द माइक इज रेडी. आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक. अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर. ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन.
1: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
1: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
13: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में. दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका के साथ. दिस इज योर रिमाइंडर दैट कैलोरीज कंज्यूम्ड व्हाइल डांसिंग डोंट काउंट. साइंटिफिक प्रूफ? नन. वी कैन बिलीव सिस्टम? एब्सोल्यूट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है.
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: बचपन का वो रेशमी धागा अब बदल गया है एक टाइमलेस डायमंड में। दिस राखी गेट अनलिमिटेड ऑफर्स एट आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Radio Mirchi. Radio Mirchi, it's hot.
4: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट, लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क,
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
4: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
3: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
5: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
3: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
2: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
1: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं. द स्टेज इज सेट,
2: द माइक इज रेडी. आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक. अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर. ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन.
3: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
6: On a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Kabhi Jersey ki street par. कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. Kabhi Jersey ki street par. कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Ladies and gentlemen.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Radio Mirchi, Radio Mirchi, it's hot.
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: चर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, न मुझे ऐसे मस का लगा, रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
2: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। रेडियो मिर्ची
2: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला? कौन बोला?

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Ego suffering create करता है, जिसके कारण हम अपनी life enjoy नहीं कर पाते हैं. आइए इस बारे में जानें.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: तो अभी मैं इन दोनों दोस्तों क्या बोलूं, क्योंकि अभी इस वक्त भी झगड़ा चल रहा है और मैंने समझाने की कोशिश की तो दोनों मेरे पे बरस पड़े. जब अकेले फोन किया, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुमको लगता मैं ही गलत हूँ. मैंने कहा भाई मैं गलत सही पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ छोटी सी जिंदगी है यार, हंस खेल के जी लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है. तो कहता नहीं, हम तो सॉरी नहीं बोलेंगे,
4: हम तो इतना ही कर सकते हैं. एक्चुअली वी कैन डू अ लॉट फॉर अदर पीपल. हम इंस्पायर कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, हम वैसा रोल प्ले कर सकते हैं. इट इज देयर अंडरस्टैंडिंग कि हम इतनी छोटी बात पर क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं. जैसे आपने कहा कि हम मिले हैं मिलने के लिए, कुछ मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए, तो वो तो उनकी एक रियलाइजेशन है. दैट इज द प्रॉब्लम ना, वो ईगो हमें लाइफ एंजॉय नहीं करने देते. ईगो सफरिंग क्रिएट करते हैं. ईगो को अगर हम पार हो जाएं, देन ओनली वी कैन एंजॉय लाइफ. ठीक है, आप डिफरेंट है, आपको जो खाना है आप खाओ, मुझे जो खाना है मैं खाऊं, आपको जहां जाना है आप जाओ, मुझे जहां जाना है मैं जाऊं. वी डोंट इंटरफेयर एंड कंट्रोल द अदर पर्सन. ईगो इज ऑलवेज वेरी वेरी कंट्रोलिंग एंड सफोकेटिंग द अदर.
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी, चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अब एक भाई साहब है, उन्होंने लिखा है कि मेरा जो बेटा है वो MBBS फोर्थ ईयर में है, मैं उसे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना कैसे सिखाऊं, वो रिएक्ट करता है आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनने से ही और बिल्कुल पसंद नहीं करता है सजेशन, और कभी कभी उसे ऐसा लगता है, वो कहता है कि ये ओल्ड पीपल के लिए, बूढ़े लोगों के लिए है, वो सुबह उठता भी नहीं है और ना ही जल्दी सोता है। अब मैं क्या करूं?
2: कहीं ना कहीं ये भी हमारी कंट्री में एक बहुत डीप बिलीव सिस्टम है कि स्पिरिचुअलिटी बूढ़े लोगों के लिए है या आफ्टर 60 है। ये बिल्कुल ऐसे कहना है कि पहले तो लाइफ के सारे एग्जाम्स दे लो और उसमें कहीं पास हुए कहीं फेल हुए और फिर पढ़ाई पढ़ेंगे कि वो एग्जाम्स कैसे देने थे। तो स्पिरिचुअलिटी एक वे ऑफ लाइफ आपको सिखाती है। अगर वो वे ऑफ लाइफ हम आज नहीं सीखते, बाद में जब कई लोग आते हैं ना हमारे पास भी, तो उनको बहुत बड़ा रिग्रेट यही रहता है कि हम पहले क्यों नहीं आए। अगर हम पहले आते तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे डील करते, रिश्तों में ऐसे चलते। सो अगेन, इसको ये माइंडसेट नहीं बनाए दैट इट इज फॉर ओल्ड पीपल, क्योंकि हम है ही स्पिरिट, वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल बॉडी। हम फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल बॉडी है। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। सेकेंडली,

0: हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। इंस्पायर करने का तरीका भी बहुत बोलने का नहीं होता, आप ये करो आप ये करो, ये जो कई बार थोड़ा नैगिंग जैसा हो जाता है बार बार, मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन पर ये बहुत वर्क करता है। पहले करता था कि नहीं वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन जो चीज़ वर्क करती है वो है किसी का ट्रांसफॉर्मेशन। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो फादर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जीते हैं और उनके अंदर का जो चेंज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो काम है, स्टेबल है, डिसीजन ले पाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ही किसी को इंस्पायर कर सकता है। तो इसीलिए अगर उन्होंने राय दे दी, उन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया, अभी वो ऐसा वे ऑफ लाइफ अगर बनाएंगे, सो मे बी दैट विल इंस्पायर द चाइल्ड।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब हम हर्ट फील कर रहे होते हैं तब क्या करें?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जब ये खाने वाली बात हुई तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सारे क्विजिन मिलते हैं।
4: क्या है उसमें?
3: उसमें भी झगड़ा हो गया कि पिछली बार में हमने ये किया था तो मेरी बात तो तुम कभी मानोगे नहीं, हर बार हम ऐसी जगह जाएंगे। मैंने कहा यार इस बात का तो कोई तोड़ नहीं है ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको हर बात से प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं दोनों को ये लगता है कि तुम दूसरे के साइड लेते हो।
4: मेरी बात
3: मेरी बात नहीं मान रहे
4: क्या है? मेरी बात
3: नहीं मान रहे,
4: मेरी बात माननी चाहिए, वरना जब मेरे अनुसार होगा तो मैं खुश होऊंगा।
3: तो ऐसे में तोड़ के सामने वाले को अगर समझाना, खुद को भी समझाना, कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं भी करता हूँ, तो क्या व्हाट इज द साइन जहाँ पे ऐसा लगे यार अब इस बात को काटनी है मुझे?
4: साइन यही है, साइन सबसे बड़ा साइन है कि अगर मुझे हर्ट हो रहा है, ये उस व्यक्ति को रियलाइज करना है कि अगर मैं इंसल्टेड फील हो रहा हूँ या मुझे लगता है उसको ये फील हो रहा है ना, मेरी बात नहीं मानी जाती, मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, दैट मीन्स आपको ईगो है, आप हर्ट हो रहे हैं ना, सामने वाला तो हर्ट नहीं हो रहा। तो जब हम हर्ट हो रहे हैं तो हमें साइलेंस में देखना चाहिए मैं कौन सी बात से इतना अटैच्ड हूँ, क्योंकि मेरे वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डांस टू आवर ट्यून्स, ये होने वाला ही नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा इजी नहीं होते तो फिर हम दर्द में रहेंगे, इट इज लाइक आई एम गोइंग टू लिव इन पेन।
3: मैंने बहुत खूबसूरत सी एक कहीं कोट पढ़ा तो मुझे अभी अचानक याद आ गया कि जब हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हम नाखूनों को काटते हैं, उंगलियों को नहीं। उसी तरह जब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए तो ईगो को काटिए, रिलेशनशिप को नहीं।
4: Absolutely.
3: तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे ये, तो मैंने कहा ये
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। श्रेया, बबलू वर्मा जो हैं वो सुरेश वर्मा के बेटे हैं, बख्शी का तालाब लखनऊ से लिख रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 से 7:30 तक अपनी कार ड्राइव करते हुए स्कूल जाते समय सुनता हूं, और ग्रेजुएट 2008 में मैं कर रहा था तो मेरे एनसीसी के सर ने मुझे ऑलवेज बी पॉजिटिव का थॉट दिया और हर घटना में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूं, मैं ये सोचता भी हूं। आज तक मेरे साथ जो भी हुआ सब अच्छा होता हुआ ये मैं ये सोचता हूं। मेरा प्रश्न सिस्टर श्रेया से यह है कि हम जो योजना बनाते हैं वो कार्य लगातार नहीं हो पाता और कुछ और ही हो जाता है, ऐसा क्यों?
3: हम कई बार ये सबको सिखाते हैं कि अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव, और उसके बाद भी हम कई बार देखते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा।
2: जी,
3: तो हमें लगता है मैंने जैसा सोचा वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि लॉ भी है संकल्प से सिद्धि। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक फैक्टर जो हमें दिखाई नहीं देता पर हर समय काम कर रहा है।
2: जी,
3: पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरकनेक्टेड है।
2: जी,
3: तो जो हमने पास्ट में किया था, जो एनर्जी हमने भेजी थी, जो कर्म हमने किया था, वो कई बार लौट करके आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन कि आपके घर में कोई बीमार है, आप अच्छा सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप हर बार जब जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि नहीं अभी ठीक नहीं है, या पैरामीटर्स ठीक नहीं दिखाई दे रहे, तो आपको लगता है मैं तो सही सोच रहा हूँ, फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं?
2: जी,
3: हम सही सिर्फ इसलिए नहीं सोचते हैं कि हम सही सोचेंगे तो बाहर की जो सिचुएशन है वो हमेशा ही चेंज हो जाएगी।
2: जी,
3: क्योंकि बाहर की जो सीन है वो उस व्यक्ति का भी कार्मिक अकाउंट है, आपका भी कोई पुराना कार्मिक अकाउंट है, लेकिन फिर भी सही सोचना क्यों है? क्योंकि फिर भी सही सोचने से कम हमारा मन तो शांत और स्टेबल है, और जब हमारा मन शांत और स्टेबल है तो जो भी चैलेंज होगा हम उसको फेस कर पाते हैं। There is also a possibility कि आपने बिल्कुल सही सोचा, उसके बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हुई। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ पास्ट का कार्मिक अकाउंट है या कोई बीमारी है, लेकिन अगर वो इंक्रीज भी हो जाती है टू एन एक्सटेंट, वो शरीर भी छोड़ देते हैं, तो भी अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप इतने बड़ी सिचुएशन को भी बहुत स्टेबिलिटी से फेस करके उनको दर्द भरी विदाई देने की जगह दुआओं भरी विदाई दे पाएंगे। सो ट्रू, जरूरी नहीं है हर चीज हमारे अनुसार हो, बिकॉज दैट वन फैक्टर, वो वन फैक्टर जो है पास्ट का जो हमें याद नहीं रहता। लेकिन हम सोल ऑन अ जर्नी है, तो वो सोल ने जो जो कर लिया है, जो एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स में भेज दी है, वो किसी ना किसी रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, धन का पेपर, डिफिकल्ट रिलेशनशिप, कोई चैलेंज के रूप में आता है, आज सही सोचेंगे तो वो सेटल हो जाएगा। लेकिन आज भी अगर गलत सोचेंगे सो देयर चांसेस कि आप उसको और बढ़ा रहे हैं।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: ईगो है क्या? आइए ईगो के बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बहुत खूबसूरत सी बात, एक बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम कोच हैं पैट राइली, तो वो कहते हैं कि ईगो इज द डिजीज ऑफ मी, जहां मैं आ गया, मैं जहां हावी हो गया ना, वो ही ईगो है। बहुत क्लियर शब्दों में उन्होंने सिखाया। और वो दो चीजें और उसमें कहते हैं कि जब सेल्फ इमेज जो है उसका जो कंसर्न है वो ऑब्सेशन में बदल जाए, और जब कॉन्फिडेंस जो है वो एरोगेंस में बदल जाए, वो ईगो है। और फिर वो बहुत लंबी चौड़ी बात कहते हैं, तो मुझे उसमें ये डिजीज ऑफ मी बड़ा अच्छा लगा। और एक और बहुत साल पहले मैं एक चीज देख रहा था, तो वो लीडरशिप की सेमिनार ले रहे थे वो इंसान, वो कह रहे थे कि वी मस्ट को हमको हमेशा मारना है। वी मस्ट क्या है? वी आई मी अस। तो वी मस्ट जो है ये डिजीज है, इसको काटो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, यू देम। तो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी है, लेकिन ये बोलना बड़ा आसान है और इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है इंडिविजुअल हैं, हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सेट्रा। तो ये भी क्या अहंकार का ही रूप है?
3: अहंकार का जो रूप है, जो हमने कहा कि सिर्फ आए नहीं लेकिन वी के बारे में हम सोचे, सो कभी कभी हमें हमारे आइडिया, हमारा तरीका, हमारा उसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, और जब वैसा होता है तो हमें सुपीरियर फील होता है।
2: जी,
3: जो आप ऑब्सेशन की फील करें, मुझे सुपीरियर फील होता है। जब मुझे फील होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो मुझे खुशी फील होती है।
2: हाँ, बिल्कुल, हर इंसान को होता है।
3: हाँ, ये ईगो है। जो हम ईगो की बात करते हैं ना, वो इतनी सी चीज की भी हो सकती है, मेरा आइडिया, मेरी राय, मेरा तरीका, मेरा काम करने का तरीका, मेरा टीम को मैनेज करने का तरीका, मेरा भाषण करने का तरीका, वही राइट है और वही सुपीरियर है, एंड दैट्स व्हेन आई फील वैल्यूड। लेकिन जब हम वी में जाते हैं, तो वी में देयर इजंट अबाउट सुपीरियर एंड इनफीरियर,
2: इट्स अबाउट इंक्लूसिविटी,
3: इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी। इसीलिए कभी कभी जब हम टीम्स में भी बैठते हैं, तो ये आपने कई बार देखा होगा, जब आप टीम्स में बैठते हैं और कई सारे मुद्दों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, तो कई बार बहुत केओटिक हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कुछ निकलता नहीं है। एक चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब बैठे हैं, हमने ये भी देखा सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, सबके परसेप्शन अलग हैं। कोई भी राय जब हम देते हैं, जब हम आइडिया देते हैं, हमसे पूछा गया ना, तो हम मालिक बन करके दें।
2: अच्छा,
3: लेकिन फिर जब डिसीजन का टाइम आए,
2: हाँ,
3: तो बालक बन जाए।
2: अच्छा, जब राय दें तो मालिक बन के दें, ओनरशिप के साथ, और जब डिसीजन का टाइम आए तो बालक बन जाएं। क्यों ऐसा?
3: क्योंकि डिसीजन वो होना चाहिए
2: जो सबकी राय से,
3: मेजोरिटी को ठीक लगता है,
2: हाँ,
3: और जिसमें कंपनी का, घर का, सेवा का बेनिफिट समाया हुआ है। इट इज नॉट अबाउट मी, बट इट इज अबाउट द सक्सेस
2: ऑफ दैट आइडिया,
3: ऑफ व्हाटएवर,
2: मतलब
3: जो भी, जिस भी चीज के लिए हम बैठे हैं। ये है थोड़ा सा अपने को अनलिमिटेड लेकर के जाना, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी। आखिर हम बैठे हैं तो हम किस लिए बैठे हैं? कि ये जो आइडिया है उससे इस कंपनी को बेनिफिट हो, सफल हो, ये सेवा जो हम कर रहे हैं सफल हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपसे कुछ पूछा गया, आपने आइडिया दिया, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, सेकेंड टर्म फिर मीटिंग में बैठे, उन्होंने पूछा, फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ, थर्ड टाइम आपका मन कहना शुरू करता है,
2: ये तो मेरी बात के, मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे।
3: ये ईगो है, कितना सटली आता है। आप इन्फीरियर फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका आइडिया एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती, आप 10 बार भी आइडिया देते, अगर वो आपको पूछ रहे हैं तो आपकी वैल्यू है ना, नहीं तो वो आपसे पूछते ही क्यों।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
2: नो
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: Positivity koi location thodi hai ki map pedala aur pahunch gaye. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: Richie Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक सवाल आया है कि एग्जाम का डर है, पेरेंट्स को 95% चाहिए और परसों मेरा एग्जाम है, बैक टू बैक पेपर्स हैं, कोई छुट्टी नहीं है, सेकेंड टाइम मैं 12th का एग्जाम दे रही हूँ, इसीलिए बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ?
2: इसमें कई सारी बातें। पहले तो आप, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए पर उसमें 95 ही होना चाहिए, और आउटकम के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो सकते। गोल भी रियलिस्टिक सेट करना होता है, हर एक को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो आउटकम सेट करना चाहिए। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपके बैक टू बैक पेपर्स हैं तो आप इन दिनों में सिर्फ रिवाइज ही कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: आप इन दिनों में बहुत पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर आपने साल भर पढ़ा होगा तो ही आप खुद ही सोचे, बैक टू बैक पेपर्स हैं तो हम कितना ही समय हमें मिलता है, उसमें रेस्ट भी चाहिए, उसमें आपको रिलैक्सेशन भी चाहिए। सो इसीलिए साल भर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। थर्डली, फियर कमजोर मन की रचना है। अगर आपको डर लग रहा है तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो वो सारे जो थॉट्स आपको आ रहे हैं, नई मार्क्स आए तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फिर से फेल हो गए तो क्या होगा, उन थॉट्स को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। अपने को कहना है, मैंने बहुत एफर्ट किया है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करी है, अब मुझे बहुत स्टेबल स्थिति में जाकर के एग्जाम देना है और जो आउटकम आएगा बहुत अच्छा आएगा।
1: जी,
2: बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, पहले तो पेरेंट्स को भी इस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, वो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। आएगा बहुत अच्छा आएगा।
1: जी,
2: बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, पहले तो पेरेंट्स को भी इस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, वो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर ऐसा होता है कि आप किसी के ऊपर 20 किलो

0: Mortgage. The king of mortgage industry.
1: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
10: मत मारे कालीन भैया,
9: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं.
11: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
12: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
9: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
12: नहीं खुला तो तोड़ देंगे.
13: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हमें ये समझना है हम अलग और हमसे एसोसिएट चीजें अलग हैं। आइए इस बारे में समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर जरूरत नहीं होती तो वापस नहीं पूछते, तो आपकी कदर है। हम अपने आप को ही उसमें डिमिनिश कर रहे हैं,
4: क्योंकि हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं दैट आई एम समथिंग व्हेन माय आइडिया गेट्स एक्सेप्टेड और वैलिडेटेड। सो आई एम आइडेंटिफाइंग विद माय आइडिया। मैं अलग हूँ, मेरा आइडिया अलग है।
3: बहुत बढ़िया।
4: मैं अलग हूँ, मेरा काम अलग है। मैं अलग हूँ, मेरा रोल अलग है। हम हर चीज से आइडेंटिफाई कर लेते।
3: बहुत खूबसूरत।
4: आइडिया तो फिर भी बहुत सटल है। बॉडी, अभी आप देखो बॉडी आज कितना ज्यादा, आजकल बॉडी इमेज, बॉडी शेमिंग, बॉडी ट्रोलिंग, ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये भी तो एक आइडेंटिफिकेशन है कि बॉडी ऐसी होनी चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: अब वो भी कौन डिसाइड करेगा? उसके भी कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है। अब आपका कोई ओपिनियन है मेरी बॉडी के प्रति, आप कुछ भी कहते हैं, सो मेनी पीपल आर फीलिंग एंशियस, डिप्रेशन तक में भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं लगता मैं सुंदर हूँ। आप कुछ भी कह देते हैं, मुझे ये याद नहीं है कि मेरी बॉडी है। एक छोटा सा ही तो डिफरेंस है ना, मेरा शरीर है, मेरी गाड़ी है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन मुझे लगता है मैं गाड़ी हूँ। जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं, अब एक पर विजुलाइज करके देखें, हमने नई गाड़ी खरीदी, बाहर पार्क करके हम अंदर ऑफिस में आ गए। अब आप जब शाम को गए पार्किंग लॉट पर, तो आपने देखा कि किसी बच्चे ने खेलते खेलते कॉइन से उसको स्क्रैच कर दिया था। उस समय आपको क्या लगता है किसको स्क्रैच किया?
3: मेरे शरीर पे उसने खरोंच दिया।
4: आपको बिल्कुल नहीं लगता कि गाड़ी को स्क्रैच किया, आपको लगता है जैसे उसने मुझे स्क्रैच कर दिया। उस मोमेंट में आप भूल गए होते हो कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कार, इट्स माय कार, मेरा कार है। शरीर भी छोड़ो अभी तो, और मटेरियल, मेरी कार है, टेम्पररी है, कुछ भी उसको हो सकता है, लेकिन वो वहां पर है। पर दुख किसको हो रहा है?
3: मुझे।
4: बिकॉज यू आइडेंटिफाई विद दैट कार। इन दैट मोमेंट आपको बिल्कुल याद नहीं है आई एम सेपरेट फ्रॉम समथिंग दैट आई हैव अक्वायर्ड।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा, तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
4: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सोनिया रजोरिया है, वो पूछती हैं कि मेरा बेटा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है और वो सोचता है कि उसे सब कुछ आता है और इससे वो अपने एग्जाम्स में आराम से पास हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ और कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनता। प्लीज़ मेरी मदद करिए, इस सिचुएशन से मैं कैसे डील करूं? मेरा बेटा जो है वो एग्ज़ाम में फेल हो गया है, इसके बावजूद कि मैंने उसे बोला था कि तुम पढ़ो और ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बच्चों के इस एटीट्यूड को कैसे तोड़ें?
2: अगर हम उस समय पर हैं कि वो फेल हो गया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके घर की करंट सिचुएशन है, तो पहली चीज ये बिल्कुल नहीं कहना मुझे पहले से पता था, मुझे तो पता ही था, ये तो होना ही था। ये हो जाता है कई बार, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो दिख ही रहा था ये चीज। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भले वो ओवर कॉन्फिडेंट था, अब जब वो फेल हो गया है तो उसका उसके मन पर जरूर इम्पैक्ट होगा।
1: बिल्कुल।
2: इसलिए एज अ पेरेंट जब कोई किसी फेलियर से गुजरता है तो पहली चीज होती है उसके मन को शक्तिशाली बनाना।
1: अच्छा,
2: सिखाएंगे बाद में।
1: हाँ।
2: वो तो सिखाना ही है, लेकिन आप कमजोर मन को तो नहीं सिखा सकते ना। आप कमजोर मन को शिक्षा नहीं दे सकते। मैं अभी आपसे चलते चलते गिर जाऊं, अपनी गलती से भी गिरूं, तो भी आप पहले क्या करेंगे?
1: पहले उठाएंगे,
2: पहले ध्यान देंगे, फर्स्ट एड देंगे, फिर जरूर मुझे सिखाएंगे कि आपको देख करके चलना चाहिए, आपको ध्यान से चलना चाहिए, आपको फोन पर टाइप करते करते नहीं चलना चाहिए। शिक्षा इज ऑलवेज सेकंड। पहले आपको उस व्यक्ति को हील करना पड़ता है। सो अगेन, अगर वो फेल हो ही गया है तो वो गिल्ट में भी होगा, उदास भी होगा, थोड़ा सा जो भी उसके इमोशनल टर्मोइल होगी। एज अ पेरेंट आपका रोल है पहले उसको बाहर निकालना, उसका स्वमान बढ़ाना। हो गया जो हो गया, अभी फुल स्टॉप लगाओ, आगे क्या करना है। इट इज ओके, एक बार आप फेल हुए इसका मतलब आप फेलियर नहीं हो।
1: हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना।
2: पेरेंट ही लेबल कर देते हैं
1: कि तुम फेलियर हो,
2: आप फेलियर हो, मुझे तो पता ही था, ये तो दिखाई दे ही रहा था, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप फेलियर हो। वो जो आप रंग रंगते हो ना बच्चे की एक इमेज, वो जीवन भर उसके साथ चलते हैं।
1: वो ज्यादा उसे परेशान करेगी,
2: क्योंकि लाइफ में मार्क्स आपको फर्स्ट जॉब दिलाते हैं, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो आपको लाइफ टाइम मदद करता है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari.
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi, it's hot.

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? आइए जानते हैं आइडियल स्लीप ड्यूरेशन क्या है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसे हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, ऑल इज गुड, हाउ आर यू?
3: बहुत बढ़िया। आप रात को अच्छे से सोई?
4: बहुत अच्छे से।
3: नींद से अच्छे से आ जाती है आपको?
4: बहुत अच्छे से आती है।
3: बहुत लोगों को नींद नहीं आती, ये भी एक बीमारी है। सोचिए कि कहते हैं कि एक तिहाई हिस्सा जो हमारी जिंदगी का होता है वो सोने में जाता है, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक स्लीप वो ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं, उनको मैंने कई बरसों से देखा है, वो मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटे सोते हैं पिछले 20-30 साल से। उनको एक बीमारी है, उस वजह से वो नहीं सो पाते हैं, लेकिन वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं हर इंसान के लिए। सुबह उठ जाएंगे, सारे खिड़कियाँ दरवाजे खोल देंगे, न्यूज़ लगा लेंगे, भक्ति गीत चला देंगे, रात को 11-12 बजे जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो अवेलेबल हमेशा सबके लिए रहते हैं। स्लीप के बारे में बहुत डिस्कशन होता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते हैं 3-4 घंटे सोता हूँ मैं मात्र, लेकिन फिट लगते हैं वो। मेरे पिताजी भी टचवुड बहुत फिट हैं, भगवान करे वो ऐसे ही बने रहें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सिंपल सा सवाल है, हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी?
4: ये सिंपल सा सवाल बहुत बार आता है, सब पूछते हैं
3: जी,
4: लेकिन इसका कोई भी डेफिनेट आंसर देना बहुत मुश्किल है।
3: अच्छा,
4: समवेयर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्लीप को हमारी इफेक्ट करते हैं। उसमें पहला फैक्टर तो यही है कि आपका दिन कैसे बीतता है।
3: जी बिल्कुल।
4: किसी का बहुत फिजिकल वर्क होता है
3: जी,
4: किसी का बहुत आराम से बैठ करके काम होता है
3: जी,
4: किसी का फिजिकल वर्क है, फिजिकली वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, सो दे माइट नीड एन आवर और टू मोर देन द अदर पर्सन।
3: राइट।
4: फिर भी अगर हमें एवरेज कहना होगा, सो आई थिंक 6 to 7 hours इज गुड
3: फॉर एन अडल्ट।
4: क्योंकि
3: बच्चों को कहते हैं कि ज्यादा चाहिए होता है,
4: बच्चे ज्यादा सोते हैं, पर एज एन अडल्ट, क्योंकि उसमें भी अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत लोग कहते हैं नींद का वो आवर्स बढ़ता ही जा रहा है। पहले कोई 4-5 घंटा कहता था, फिर 6, 7, 8, 9, अभी 10 घंटे भी कहते हैं
3: जी,
4: तो फिर सोते ही रहेंगे, इट्स लाइक दैट,
3: तो काम कब करेंगे,
4: काम कब करेंगे। मोर देन दैट, क्यों इतने घंटे हम बढ़ा रहे हैं, माना जो स्लीप का पर्पस क्या है? स्लीप आपकी बॉडी जो थकी हुई है उसको भी रेजुवेनेट करता है, साथ साथ माइंड की भी हीलिंग करता है। माइंड बॉडी दोनों की हीलिंग होती है।
3: बिल्कुल।
4: कभी कभी आजकल क्या हो रहा है, शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता है। मन अभी तक अपने ओवर थिंकिंग के मोड पर होता है। 8-10 घंटे सोने के बाद भी किसी किसी को उठ करके लगता है 5 मिनट और, जो 8-10 घंटे में नहीं हुआ
3: वो 5 मिनट में कैसे
4: होगा, वो 5 मिनट में क्या होगा।
3: हाँ।
4: तो एक्चुअली वो 5 मिनट और का कारण ये है कि मन नहीं सोया था, मन अभी भी थका हुआ है, इसीलिए आपको उठने की दिल नहीं करती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
5: जय गुरुदेव. अवसर आवीने उभो छे आंगणे. चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मां जोडायो, जेमा
6: 13 सप्टेम्बर रविवार
5: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200. जय गुरुदेव.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इसलिन.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Positivity कोई location थोड़ी है कि map पे डाला और पहुंच गए. It's a journey. चलो इस journey पे with Mirchi Recharge Mornings. सुबह 6 से 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कुछ लोग सुबह फ्रेश होकर क्यों नहीं उठ पाते, आइए इसकी पॉसिबल रीजंस को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो ये जो मन थका हुआ है ये बहुत कॉमन चीज है, बिकॉज अक्सर जो इंसान जब सुबह उठता है तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह फ्रेश नहीं उठे हम सुबह, हमको थकावट की अभी भी महसूस हो रही है, या आंखें फूल सूजी हुई हैं, या ऐसा लगता है कि थोड़ा और सो जाएंगे तो कभी कभी हेडेक के साथ भी उठते हैं तो शायद हेडेक चला जाएगा। आप कह रहे हैं कि मन नहीं सोया, अब ये मन को अगर सुलाना हो तो कैसे सुलाएं?
4: कई सारी चीजें, ये एक फैक्टर है, मतलब स्लीप डिप्राइव्ड हम बहुत देखते हैं आजकल लोगों
3: जी।
4: को आप देखें, चाहे हम मॉर्निंग का समय होगा, ट्रैवल कर रहे होंगे, लोकल ट्रेन्स में होंगे मुंबई में
3: जी।
4: आप फ्लाइट में होंगे, आप कई बार देखते हैं मॉर्निंग है अभी 7 बजे 8 बजे, पीपल हैव स्लेप्ट वेल, बट फिर भी बैठते ही
3: नींद आ जाती है,
4: कहीं पर भी सो सकते हैं, कहीं पर भी बैठे बैठे भी सो जाते हैं
3: जी।
4: तो ये एक साइन है कि स्लीप डिप्राइव्ड है
3: जी।
4: अब स्लीप डिप्राइव्ड दो तरह से हो सकता है, कि एक है कि सच में स्लीप डिप्राइव्ड है, आप उतने घंटे सोए नहीं है, दूसरा है क्वालिटी ऑफ स्लीप ठीक नहीं थी। दोनों अलग चीज है,
3: क्वांटिटी और क्वालिटी
4: दोनों पर ही ध्यान देने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर आपकी क्वालिटी स्लीप होने लगती है तो क्वांटिटी अपने आप कम होने लगती है। दैट इज वाई सम पीपल 4-5 आवर्स भी उनके लिए सफिशियंट हो जाते हैं, क्योंकि वो स्लीप बहुत क्वालिटी होती है। तो कुछ चीजें हैं जो हम रात को कर सकते हैं सोने से पहले, अगर हम कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी भी फॉलो करेंगे, यू विल सी दैट वी विल स्टार्ट स्लीपिंग बेटर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hot Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: It's 8:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छी नींद के क्या फायदे हैं और स्लीप डेप्रिवेशन का हम पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि आपने कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्लीप क्या है। आपने कहा ये बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि ये तो आपने मोटा मोटा बता दिया, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे सब यू नो वर्टिकल्स हैं। जैसे कहते हैं कि भैया गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप अच्छा सोएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आप लंबा जिएंगे, आप फास्ट एज नहीं करेंगे, आप खुश रहेंगे। कई बार नींद की कमी के कारण इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, फिर वो कहते हैं कि इसके साथ डिजीजेस भी लिंक्ड होते हैं। जब आपको सही नींद नहीं मिलती सही मात्रा में, और कम से कम 7 घंटे, जैसे आपने कहा 6 से 7 घंटे अगर नहीं मिले, तो इट कैन लीड टू स्ट्रोक, इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी बढ़ने का भी कारण होता है। अभी कह रहे हैं कि 3 तरह के कैंसर वो हैं, बाउल कैंसर, आई थिंक प्रोस्टेट कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के इंक्रीज भी इससे लिंक किया गया है, अगर स्लीप की कमी हो। वेट गेन जो है वो भी स्लीप के कारण हो सकता है। ओबेसिटी का कारण माना जाता है कि बच्चों में 89% तक बढ़ने के आसार नजर आते हैं और अडल्ट्स में करीब 50% बढ़ने के नजर आते हैं, अगर आपको नींद पूरी नहीं हो रही हो। तो टाइप 2 डायबिटीज इससे बढ़ने का कारण होता है।
3: हम ये सब सुनते हैं, हम कहते क्या कनेक्शन है ओबेसिटी और स्लीप का, क्या कनेक्शन है?
2: बिल्कुल, और ये बहुत, मैं भी जब पढ़ रहा था मैंने कहा अरे तो मेरे मोटापे का कारण ये है कि मैं कम सो रहा हूँ।
3: इट कुड बी वन ऑफ द रीजन, क्योंकि जब आप अगर ठीक से नहीं सोए होते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं कर रहे होते हैं
2: जी,
3: तो आप उन चीजों को क्रेव करना शुरू करते हैं जो आपको इमीडिएटली एक हिट जैसा देता है, आपको फ्रेश फील कराता है। यूजुअली अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो आप खाना भी वो वाला चूज करते हैं जो आपको इमीडिएट
2: सैटिस्फैक्शन
3: देगा या प्लेजर की फीलिंग क्रिएट करेगा या शुगर स्पाइक आपकी बॉडी के अंदर देगा
2: जी।
3: और फिर एक बार उसकी आदत पड़ जाती है, स्टार्ट क्रेविंग दैट।
2: बिल्कुल,
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
7: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नींद और गिल्ट का क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं इस इमोशनल कनेक्शन को।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो जब मैंने पढ़ा कि इतनी सारी चीजें हैं जो कम सोने से होती हैं, तो मैंने कहा क्या जरूरत है यार, आराम से सो जाओ। लेकिन आज की जिंदगी में जब मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था, ऑफिस में बात कर रहा था, परिवार में बात कर रहा था, नींद ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। इनफैक्ट इसका उल्टा जरूर होता है, बहुत लोग गिल्टी फील करते हैं अगर वो ज्यादा सो जाएं। ज्यादातर घरों में जो घर का ख्याल रखते हैं, वो चाहे माएं हों, बीवियां हों, बहनें हों एक्सेट्रा, ज्यादातर घरों में, इंडियन घरों में ऐसा देखा गया है, वो अगर आधा घंटा सो जाएं दोपहर में या सुबह लेट उठें या बीमारी भी हो तो बहुत गिल्टी फीलिंग आती है। और एक आध बार मैंने पूछा भी कि क्या हो गया, अगर बीमार हो तो सो जाओ, इसे नहीं तुम उठ गए, पापा उठ गए, या लेट से फूफा जी आ गए घर पे, या ससुराल से कोई आया है, तो हम कैसे सो सकते हैं। तो नींद का गिल्ट से क्या कनेक्शन, मुझे समझ में नहीं आया।
4: गिल्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, कई बार सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कुछ नहीं है। अगर आप घर को संभाल रहे होते हैं तो उस समय पर आपको लगता है शायद आपको अवेलेबल होना जरूरी है, आप अवेलेबल नहीं होंगे है तो उनकी शुभ भावना ही पीछे। उनको लगता है कि अगर हम अवेलेबल होंगे तो सब कुछ सिस्टमैटिक होगा, सब कुछ ईजी होगा, क्योंकि उनका एक रोल है और वो रोल प्ले करते हैं तो बहुत चीजें स्मूथ होती हैं। बट एट द सेम टाइम आई फील अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई भी और कारण है तो फिर घर के मेंबर्स को वो सपोर्ट करना चाहिए। गिल्ट की फीलिंग तो है ना, अगर घर वाले कहेंगे कि कोई बात नहीं आज हम खाना बना लेंगे, कोई बात नहीं आज हम देख लेंगे, सो दे कैन ऑल्सो स्लीप प्रॉपरली। पर कई बार ऐसा नहीं होता, समवेयर वहां पर भी होता है कब उठेंगे, कब आएंगे, ऐसा क्या हुआ है, इतनी बड़ी बात क्या, या ये इतना सा करके फिर रेस्ट कर लें, दिन भर में तो रेस्ट ही करना है ना, सुबह थोड़ा सा कर लें। सो इट इज ऑल्सो कल्चरल, इट इज ऑल्सो डिफरेंट होम टू होम कि वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है, वहाँ की अपब्रिंगिंग कैसी है, सो लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट फॉर ईच अदर इज नेसेसरी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नींद और गिल्ट के इस कनेक्शन को कैसे ब्रेक करें? आइए जानते हैं कुछ इजी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे, कई बार हमारे यहाँ रिलेटिव्स जो हैं सुबह सुबह 8 बजे आ जाते थे। संडे के दिन, संडे एकमात्र दिन था जब मम्मी या हम सब थोड़ा आराम करते थे, तो हमको लगता था यार 8 बजे सुबह कौन आता है। और अब धीरे धीरे जो जिंदगी है थोड़ी बदल गई है, तो अब लंच के बाद ही इंसान नॉर्मली आता है, और अगर सुबह भी आना हो तो 11 बजे आते हैं। एक जो एडवांटेज मैंने देखा था सुबह 8 बजे आने का या 9 बजे आने का, वो ये था कि सारा दिन आपके पास फिर फ्री हो जाता है बाकी सब काम करने के लिए। बट दूसरा पहलू जो मैंने देखा, इस मम्मीज में बहुत गिल्ट होता था कि सुबह पहले अगर वो 8 बजे आ जाएंगे तो मुझे सुबह जल्दी उठ के उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो सडनली उनके काम करने का प्रेशर वॉज लिंक टू, मैं आज ज्यादा सो नहीं सकती वरना लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे जो रिलेटिव्स आएंगे वो क्या सोचेंगे। तो मैंने ये देखा है कि हालांकि हम कह रहे हैं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गिल्ट फीलिंग आ जाती है, चाहे वो खुद में नहीं हो तो सामने वाला डाल देता है कि यार आपके यहाँ तो लेट तक सोते हैं लोग।
4: सामने वाला तो हमारे अंदर कोई फीलिंग डाल नहीं सकता है। ये चीज क्या होता है कि हम जो कई बार बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न उठा करके सामना शिफ्ट करना चाहते हैं।
3: अच्छा,
4: अगर आपके ऐसा घर में है कि कोई जल्दी आ भी जाता है, मॉर्निंग्स में जल्दी आ भी जाता है, आपके पास चॉइस होती है कि आप उस चीज को कैसे करते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं, इट इज जस्ट यू नो इट्स द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो आप अपने साथ करते हैं।
3: अच्छा,
4: आप बहुत विक्टिम मोड में भी सारा काम कर सकते हैं।
3: हाँ।
4: और आप बहुत खुशी से भी कर सकते हैं
3: जी।
4: पहले तो ये देखना होता है कि वो जो मेरा रोल है,
3: हाँ,
4: अगर वो मुझे रोल बजाना ही है,
3: हाँ,
4: मैं उस रोल से छूट नहीं सकता। मे बी आज के दिन संडे के दिन वो मदर है या घर का कोई भी है, वो रोल मुझे प्ले करना ही है। सो नाउ आई कैन डिसाइड कि वो जो रोल मुझे प्ले करना है वो रोते रोते करना है
3: या खुशी खुशी करना
4: या खुशी से करना है। वो जो मुझे नाश्ता बनाना है वो खुशी से बनाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे ही रिलेटिव्स हैं, वो मेरा ही परिवार है, वो मेरे से ही मिलने आ रहे हैं। हम उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, चाहे तो हम एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो हम इरिटेट भी हो सकते हैं, गिल्ट में भी जा सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, चूज। जब करना ही है ना, बहुत करके क्या होता है, हम बहुत कुछ करते हैं, करते हैं, ऐसा नहीं है करते नहीं है, मजबूरी से करते हैं।
3: बिल्कुल,
4: कर भी लेते हैं लेकिन अंदर में थोड़ा इरिटेट होते रहते हैं। अच्छे से बाहर से लगेगा सब बहुत अच्छे से किया है, पर अंदर में वो खुशी नहीं होती। तो जब आपने चूज कर ही लिया, तो आप पहले अपने को उस स्थिति में लेकर के आए, 2 घंटे की बात है, मेरा ही परिवार आ रहा है, हमसे बहुत प्यार करता है, हमें बहुत खुशी है वो हमारे घर पर आ रहे हैं, लेट मी डू इट विद जॉय एंड यू नो लेट मी एंजॉय दिस। सेकेंडली, आप परिवार वालों को कह सकते हैं
3: कि सुबह सुबह मत आया करो।
4: नहीं, आप उनको नहीं कहिए सुबह सुबह नहीं आया करो, आप अपनी इमीडिएट फैमिली को कह सकते हैं सपोर्ट करने के लिए।
3: हाँ।
4: आप उनको नहीं कह सकते आप नहीं आया करो, वो शायद हर्ट हो जाएंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
11: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
10: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
11: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
12: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
13: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
14: रिलेशनशिप में सिर्फ एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं.
15: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
16: मुझे एक चीज बताइए, आपने जब ये बात कही तो एक सडनली एक इमेज मेरे दिमाग में आया. मुझे याद है कई बार घर पे झगड़े भी इस बात के होते थे. मेरी माँ मुझे याद है मम्मी पापा को कहती थी कि दोपहर में तुम अपने आप अपने रिलेटिव्स या बिजनेस पार्टनर्स को मत लाया करो. एक वो सुबह दोपहर में वो आधा घंटा ही तो मिलता मुझे सोने का, उस समय भी आप आ जाते हैं किसी को लेके एक्सेट्रा. तो बहुत बार लड़ाइयाँ होती थी मुझे याद है बचपन में. तो आप कह रहे हैं कि खुशी खुशी करो, बट अगर ये रेगुलरली डिफॉल्ट होता है ना तो आदमी इरिटेट तो होता ही है.
17: अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए ना फैमिली में. अगर वो आधे घंटे के लिए ही रिक्वेस्ट कर रही है, सी दैट इज वेयर द रिलेशनशिप कम्स इनटू प्ले. अगर हम एक दूसरे को समझते हैं तो वही हम आधा घंटा बाद में भी शिफ्ट कर सकते हैं. अगर वो वंस इन अ वाइल होगा ना तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे. सी आप कह रहे हैं अगर डिफॉल्ट होगा तो नेचुरल सी बात है कि फिर वो उतना कोऑपरेट नहीं करेंगे, उतना सहयोग नहीं देंगे. मे बी दैट इज हर टाइम, दैट्स हर मी टाइम और रेस्ट टाइम है, वो उतना ही आधा घंटा है. अगर आप उनको भी समझते हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं, उनके टाइम को वैल्यू करते हैं, उनके टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, तो किसी दिन अगर उस टाइम पर कोई आएगा तो वो भी अपने उस रेस्ट टाइम को सैक्रिफाइस करके आपको जरूर सपोर्ट भी करेंगे. कोई बीमार होगा पूरा हेल्प भी करेंगे. दैट्स वेयर रिलेशनशिप इज, व्हेन यू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड मेक दोस लिटिल लिटिल सैक्रिफाइसेस फॉर ईच अदर.
13: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: It's 9:30 a.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: अगर हमें हेल्दी रहना है किन तीन इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान देना चाहिए आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: बच्चों को लेके घर पे काफी तांडव मचा रहता है कि यार ये सुबह 10-10 बजे तक नहीं उठते और कई बार बच्चे बोलते हैं हम बहुत पढ़ते हैं रात को या फिर हम स्कूल का हमको बहुत रहता है तो ज़्यादातर बोलते हैं कि बच्चों को ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक एवरेज अडल्ट 6-7 घंटे क्वालिटी स्लीप ले तो बच्चों के लिए बोलते हैं कि 9-10 घंटे उनको ज़रूरत पड़ती है।
5: बच्चे मतलब कौन सी एज के?
4: लेट्स से 15 साल तक की उम्र के बच्चे।
5: आई थिंक 15 साल में भी 6-7 आवर्स इज सफिशिएंट। आप देखें खाना और नींद
4: जी
5: दो चीजें ऐसी हैं आप जितना बढ़ा दें वो बढ़ती जाएंगे दोनों के साथ।
4: कम करें वो
5: हाँ मतलब जितना कम तो एक लिमिट तो है क्योंकि वो दोनों चीजों पर शरीर चलता है तो उसकी एक आवश्यकता तो है। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि अगर आप नहीं देंगे खाना स्लीप तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। हेल्दी बॉडी को क्या चाहिए? एक्सरसाइज, फूड एंड गुड स्लीप, ये तीन चीजें चाहिए। इफ यू वॉन्ट अ हेल्दी बॉडी आपकी डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप वो चाहिए। बट एट द सेम टाइम स्लीप एंड फूड इज समथिंग अगर आप बढ़ाते जाएंगे ना वो बढ़ता जाएंगे। आप कभी देखना रेगुलर डेज पर हम जितना सोते हैं संडेज को या वीकेंड्स पर हम तो सोचते हैं थोड़ा ज्यादा सोएंगे।
4: बिल्कुल।
5: हम ज्यादा लेजी किस दिन हो जाते हैं फिर? ज्यादा सोने के बाद भी हम ज्यादा फ्रेश नहीं फील करते हैं। कई बार ज्यादा सोने के बाद भी आपको एक लेथार्जी सी बनी रहती है, एक लेजीनेस सी बनी रहती है। हमें लगता है, हमें ये लगता है कि हम शायद ज्यादा सोएंगे या तो हम बहुत फ्रेश हो जाएंगे। दैट इज नॉट द ट्रूथ। यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लीप, वो तो है, लेकिन यू डोंट नीड मोर देन दैट इवन इफ इट्स अ वीकेंड। उससे ज्यादा वो चीज नहीं चाहिए
4: कि आज मैं 15 घंटे सोऊंगा, ऐसा इसका कोई फायदा होता नहीं है।
5: नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता। वो इनफैक्ट वो चीज आपकी जो बॉडी है वो एक बहुत उसका बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका एक रिदम है। अगर आप उसी के अनुसार उसको चलाते हैं तो वो बेस्ट प्रोडक्टिविटी देती है। जैसे कोई मशीन होती है, हम उस मशीन को समझते हैं, इस मशीन को कितना चलाना है, कितना इसको रेस्ट देना है, ये बेस्ट आउटपुट किस पर देती है। ऐसे ही कितने बजे हम सोते हैं, कितने बजे हम उठते हैं, हम उससे पहले क्या खाते हैं, अगर उसको समझ लेते हैं तो हमारी बॉडी भी बेस्ट आउटपुट देती है। इनफैक्ट जो लोग आप देखते हैं 4-5 घंटा सोते हैं, आप अभी प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, पर वो आउटपुट तो कितना देते हैं? वो ऐसा थोड़ी ना है कि 4 घंटा सो करके वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं या वो मीटिंग्स में नहीं है। देर आर डेज जब वो सो भी कम रहे होते हैं और वो खा भी कम रहे होते हैं, वो फास्ट आदि कर रहे होते हैं या वो सिर्फ वाटर पर होते हैं, तो भी हम देखते हैं कि वो देश विदेश में बहुत अच्छे से बहुत फ्रेश होकर के अपना पाठ बजा रहे होते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट स्लीप, इट इज ऑल्सो कितना आप मन से कितने फ्रेश हैं।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस। दिस सितंबर 12th एंड 13th, जॉइन अस एट द इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर एट श्री कृष्ण मंदिर, मॉर्गनविल।
3: एंजॉय डिलीशियस इंडियन फूड, शॉपिंग, लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अ हेल्थ फेयर, किड्स एक्टिविटीज एंड मच मोर। मॉर्निंग 10 a.m. टू 7 p.m.
4: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Orange Morning, only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर रौनक कसत हैं, वो पूछते हैं कि मैं किसी से बहुत गहरे रूप से प्यार करता हूँ, मेरा जो दिल है, माई हार्ट स्टिल लव्स हर, मेरा हार्ट अभी भी उसे पकड़ा हुआ है, जबकि मेरा जो दिमाग है वो आगे बढ़ना चाहता है। अब मैं लेट गो कैसे करूं इस अटैचमेंट से और इनर पीस कैसे पाऊं?
2: अब जब हम बात करते हैं हार्ट की और दिमाग की, तो हम क्या कर रहे हैं? ये वाला हार्ट तो नहीं है जो,
1: नहीं, ये फिजिक जो अंदर जो ब्लड पंप कर रहा है, उस हार्ट की बात नहीं हो रही,
2: उस बात नहीं चल रही। देखो, हम एक होता है फीलिंग्स, एक होता है वो जो कह रहे दिमाग इंटेलेक्ट, और एक उससे भी हायर होता है जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, उसको भी हम दिल ही कह देते हैं
1: जी,
2: कभी कभी हम उसको भी दिल कह देते
1: जी,
2: पर वो बहुत प्योर विजडम होता है। वो प्योर विजडम की अवेयरनेस में तो कम लोग जीते हैं।
1: अच्छा,
2: क्योंकि वो होता सबसे पावरफुल इंट्यूशन है। इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं ना, हम कई बार कहते हैं ये मेरा, उसमें भी अक्सर यही आ जाता है कि मेरा दिल ये कर रहा है, बहुत, इट्स वन थॉट, इट्स अ वेरी पावरफुल वन थॉट, और अगर आप वो करते हैं उसमें सफलता ही होती है। वो लॉजिक को डिफाई करता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि ये राइट है। बट इंट्यूशन काम तब करती है जब आपका माइंड बिल्कुल क्लटर्ड नहीं है। और बहुत करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लटर होता है, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, बहुत व्यर्थ होता है, तो इंट्यूशन ज़्यादातर आजकल काम कर नहीं रही है, करनी चाहिए। फिर सेकंड लेवल आ जाता है कि हम कहते हैं दिल की सुने या दिमाग की सुने। ये वाला जो दिल है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो गलतियाँ करा देता है। उसमें दिमाग की सुनना बेटर होता है, जो रैशनल है, मोर एनालिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्यों मूव ऑन करना चाहते हैं, उनको लगता है ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या वो रिलेशनशिप में कोई तो कारण है ना। अगर वो कारण आपको समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, लॉट ऑफ पीपल को पता होता है कि अभी मूव ऑन कर लेना चाहिए। उनका इंटेलेक्ट वाइज डिसीजन दे रहा होता है, लेकिन वो जो मन, जो बिल्कुल वीक फैक्टर होता है उस समय, मन नहीं मानता, मन नहीं कर रहा था, या मन कर रहा था खा लिया, या मन, वो बहुत डैमेज क्रिएट कर देता है। सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपकी इंटेलेक्ट समझ रही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अटैचमेंट और प्यार में फर्क होता है। अटैचमेंट डिपेंडेंसी होती है, आपको उनसे कुछ मिल रहा था। प्यार होता है जब हम उनको कुछ दे रहे थे।
1: क्या बात।
2: लव इज फ्लोइंग फ्रॉम माई डायरेक्शन टू देम, हमारे से कुछ उनको मिल रहा था। अटैचमेंट डिपेंडेंसी है, हमें उनसे कुछ मिल रहा था। क्या मिल रहा था? वो खुद से क्रिएट करना शुरू करे। कोई भी रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो हमें वीक बनाती है। तो उस डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करें, अपने को एम्पावर करके इंडिपेंडेंट बने। हर चीज में इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है। फिजिकली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सोशली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
1: अरे वाह, क्या बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Yeah, you already know what it is.

0: सारा मेरा उप्स।
1: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिस ईयर। पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया। इट स्टेड ऑन नंबर 1 फॉर सो मेनी वीक्स। लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वीक इट्स ऑन नंबर 7 फ्रॉम नंबर 4 लास्ट वीक। एंड माय नेम इज सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची डॉट 20। एंड ये जो दो दोस्त है मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीस टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता। नशा

आई हेट इट सो मच दैट आई एक्चुअली लव इट. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िए नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: जयदीप
2: हाँ जी
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था
2: हाँ जी
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको काम क्यों नहीं करेंगे
3: क्या यूज करूं आधे घंटे से यूज कर रहा हूं कोई फायदा नहीं हो रहा
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की
3: काम तो हो नहीं रहा ना काम नहीं हो रहा
2: आप सही से काम करके देखिए ना काम नहीं करेगा
3: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ कोई आना जाए बस ये तो है भी बड़ा रिस्की ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ ये टॉर्च चला ली ठीक है ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा पहले ही पकड़ा जाऊंगा चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ पांच खोल के देख ली मैंने पूरे बैंक में पांच लॉकर है एक नहीं खुल रहा कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो आप जो कहोगे हो जाएगा काम कर लिए काम जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ आधे घंटे से खुली नहीं रही
2: तो कहाँ पे है तू
3: बैंक में
2: अब तू पागल है क्या बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर अपना हथौड़ा ना चलने पे अब सारा ने
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार ये
3: खोलूंगा ना खुल ही नहीं रहा क्या करूँ आप
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू तू जो कर रहा है कर तू तू तू फोन रख भाई मेरे पास कॉल मत करियो
3: ठीक है मैं वापस कर रहा हूँ ठीक मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
10: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस
11: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह, फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस्त जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है, एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा, एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन, एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स, रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था। एंड द बेस्ट पार्ट, दे बोथ एक्चुअली लुक गुड टुगेदर। बट दोनों को एक दूसरे के साथ फिल्म करना क्या रास आया, जान लेते हैं।
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor, and I've always admired his work. And ये experience करने के लिए on set with him बहुत मजा आया, and he's really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born, because our parents are friendly, and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And क्या है कि प्रीतम दा ने जो गाना बनाया है उसका जोन, उसकी वाइब एक और गाने से काफी मिलती जुलती है। बट उससे पहले आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: तुम्हें जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, it does sound like another song that I really love. Jo feeling, jo vibe thi, Love Aajkal 2 ke gaane mein. I found it here as well. And that is why mere is hafte ka pick of the week hai, Haan Main Galat, once again by Arijit Singh and Preetam Da on the Mirchi Top 20 with me, Suren.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए। प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट I don't think प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year-old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
1: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो बुलबुले 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन बीट सोनू टीटू का म्यूजिक, बीट भूल भुलैया का म्यूजिक और बीट एनी अदर फिल्म ऑफ माइन, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को ये, तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया, विच मीन्स ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे वी हैव अ न्यू किंग। जिस गाने ने पिछले हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे, राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस, तनिष्क बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमी अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। Talks about your taste more than mine. Check it out. You're on the Mirchi Top 20. I am Surin.
2: Number 1.

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी ही डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: It's 10:30 a.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vierba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika? ये अंशिका, आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष। संतोष
2: संतोष
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं।
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
3: डू? दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो। God bless you. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
8: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
9: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
7: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
10: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
11: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
12: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
13: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
12: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
7: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ગુડ મોર્નિંગ, યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી. હું છું કૃતાર્થ. ઘણા બધા એવા કામ હશે કે જે તમારાથી આખા વીકના ડ્યુરેશનમાં ના થયા હોય, તો આજનું રિમાઇન્ડર છે કે વીકેન્ડ છે, વીકેન્ડ એ બધા જ પેન્ડિંગ કામ કરી લો. નાના નાના કામ હશે, પંખાની કોઈ સ્વિચ બગડી ગઈ હોય, લાઇટનો બલ્બ લાવવાનો હોય, કુલર બહુ ચલાવ્યું હોય આ વખતે તો એના ફિલ્ટર સાફ કરવાના હોય, એસીના ફિલ્ટર સાફ કરવા માટે કોઈ માણસ બોલાવવાનો હોય, ગાડી અંદર અને બહારથી સાફ કરાવવાની હોય. કારણ કે પછી આખા વીકના ડ્યુરેશનમાં તો તમને સમય મળે નહીં. આખા અઠવાડિયાથી ઇસ્ત્રીના કપડાં કંઈ પડી રહ્યા હોય તો પછી જલ્દીથી એને ધોબીને આપી આવો. આ બધા જ કામ હશે. જોઈ લો, લિસ્ટ બનાવી લો. કહેજો ઘરમાં કોઈ પૂછે તો કે ભાઈ કેવી રીતે યાદ આવ્યું, તો કહેજો કે ભાઈ કૃતાર્થ યાદ કરાવ્યું છે. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી. હું છું કૃતાર્થ. ઇટ્સ હોટ. અ વેરી ગુડ મોર્નિંગ.
1: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
2: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
1: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं. द स्टेज इज सेट,
2: द माइक इज रेडी. आर यू Indian American Women Entrepreneurs Association presents Mirchi Hot Mic. Abhi register karein. WhatsApp par likhiye Hot Mic aur bhejiye 9033647244 par. Grand Finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: और सिकी स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आज आइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: It's 1 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. It's 1:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: ए सांबा जिंदगी की बरसात है, आज रात है, टाइम पास है।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
5: छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया. बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं.
6: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
7: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
5: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
7: नहीं खुला तो तोड़ देंगे.
8: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
9: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
10: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
9: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
11: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
9: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai.
12: Ek hi hota hai. Already open.
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
13: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
6: 13 सप्टेम्बर रविवार
5: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: Hello, Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी,
2: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
1: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
2: संतोष. संतोष
1: संतोष
2: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं नहीं कोई बात.
2: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आए. मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
1: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू?
2: आई एम एंट्रोनोर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एंट्रोपोनोर. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है. अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो. गॉड ब्लेस यू. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी. हंस हंस क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
6: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
12: अब मिर्ची खा.
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
16: 92.7 FM. रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: दिस सितंबर 12th एंड 13th, जॉइन अस एट द इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर एट श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल।
10: एंजॉय डिलीशियस इंडियन फूड, शॉपिंग, लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेस, अ हेल्थ फेयर, किड्स एक्टिविटीज एंड मच मोर। मॉर्निंग 10 AM टू 7 PM।
11: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
15: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
14: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Desi khana,
7: desi shopping,
6: desi culture
7: aur desi entertainment.
6: Bas ek hi destination.
7: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
8: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Isca bana, usca bana, saca bana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virgua la burga.
2: Milci, burga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: ये जयदीप
3: हाँ जी
4: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था
3: हाँ जी
4: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो
3: मतलब
4: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं
3: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
4: मैं यही कह रहा हूँ तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं
3: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको काम क्यों नहीं करेंगे
4: क्या यूज करूँ आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा
3: भाई साहब आप सही से यूज करिए बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको
4: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है
3: अरे आप बढ़िया क्वालिटी के दिए 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं
4: की काम तो हो नहीं रहा ना काम नहीं हो रहा
3: आप सही से काम करके देखिए ना काम नहीं करेगा
4: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ कोई आना जाए बस ये तो है भी बड़ा रिस्की ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ ये टॉर्च चला ली ठीक है ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा
3: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा
4: हथौड़ा जोर से मार दो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा पहले ही पकड़ा जाऊंगा चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ पांच खोल के देख ली मैंने पूरे बैंक में पांच लॉकर है एक नहीं खुल रहा कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो आप जो कहोगे हो जाएगा काम कर लिए काम जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ आधे घंटे से खुली नहीं रही
3: तो कहाँ पे है तू
4: बैंक में
3: अबे तू पागल है क्या बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे
4: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर अपने हथौड़ा ना चलने पे अब सारा ने
3: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार ये
4: खोलूंगा ना खुल ही नहीं रहा क्या करूँ आप
3: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो करना है कर तू फोन रख भाई मेरे पास कॉल मत करियो
4: ठीक है मैं वापस कर रहा हूँ ठीक
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: सुनो ब्राइड्स अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
9: तो आइए फैशन क्वीन यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन
10: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज comes the naan the same traditional taste flavor and freshness guaranteed deep cow to jano
11: inefficient
12: very complex
11: clumsy or
12: confusion
11: disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain toote phoote software se chhutkara pao apne business ke liye zoho one le aao zoho one is an all in one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain yes you heard that right you can run your entire business sales marketing se leke customer support accounting operations ya hr kaam anek software ek zoho one get your free trial at zoho.com/one
13: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
15: तेरा क्या होगा कालिया
16: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
15: अब मिर्ची खा
17: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
11: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home, our rate saver will beat

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 5 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
4: मिर्ची पर अब बारी है असली पॉप काउंटडाउन की. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए करते हैं. उसके साथ साथ हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक, सम स्पेशल शाउट आउट एंड आज काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं. सो स्टे कनेक्टेड विद अस एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर. कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप. शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. इस काउंटडाउन की शुरुआत ही आज एक नई एंट्री के साथ हो रही है. गाना नंबर 10 पर डेब्यू करता है बंजारे का गाना बरसात. इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आज से एक साल पहले हम बंजारे द आर्टिस्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानते थे और आज उनके दो गाने हैं इस काउंटडाउन पे. एक ने डेब्यू किया नंबर 10 और एक है ऑन द टॉप. इस सुपर इनक्रेडिबल हरियाणवी डुओ इज वन टू लुक फॉर. रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बरसात इज डेब्यूइंग दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके ऑन गाना नंबर 2. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: Number 10.

0: The man, the myth, the legend, Sanju Rathod ki awaz. That was Bangles. Pichle hafte se do pudushe niche drop hoke. This week on Gaana number 9.
1: Gaana Indie Top 10.
2: Gaana Indie Top 10.
3: Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. At RJ Kanika on Instagram par jao, mere saath connect karo. Koi gaana share karna ho, bindas aake hit me up. कौन सा गाना किसको अच्छा लगता है, कोई एक गाने से कितना डीप लेवल पे कनेक्ट करता है, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव. आई ट्रूली बिलीव दैट हमें कोई गाना हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस की वजह से अच्छा लगता है, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स टू इट, जो बहुत बार हम जिस सिचुएशंस में होते हैं, जिस एनवायरमेंट में होते हैं, जिस दौर में होते हैं अपनी जिंदगी के, उससे कनेक्टेड होता है. बट ऐसे गाने होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, उन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए हम अपना 90s एंड 2000s का इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए प्ले करने वाले हैं. बट वन थिंग आई ऑब्जर्व थ्रू द वीक्स इज जब भी हम कोई गाना प्ले करते हैं, उसके इंट्रो म्यूजिक पर ही लोग उस गाने को पहचान जाते हैं. दैट मेक्स अस रियलाइज द पावर ऑफ अ गुड इंट्रो म्यूजिक, जैसे दिस वन बाय लकी अली. आई नो आप साथ में गुनगुनाने लग गए थे. ये मेलेडी, ये इंट्रो म्यूजिक हमारी मेमोरीज में एच्ड है, जस्ट लाइक मोहित चौहान का डूबा डूबा. ये म्यूजिक आपको पहाड़ों पे ट्रांसपोर्ट कर देता है. मोहित चौहान का गाना डूबा डूबा पूरा याद आ जाता है. सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रो पीसेस. एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपके लिए इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ. आपको बताना है कौन से वाला गाना है. इट्स अ हाई बीट वन. एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर मुझे आगे बताओ ये कौन सा गाना है. शो में आगे बढ़ते हुए वी विल प्ले वन ऑफ दीज सॉन्ग्स ऑन आवर कैसेट क्लासिक्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मूविंग ऑन विद द काउंटडाउन, अगले वाला गाना ज़ारा खान स्केल्स का मूव बॉडी. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार मूव बॉडी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8.
4: Number 8.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज. Comes the naan, the same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
0: Indie Top 10
8: Kanika ke saath on Mirchi.
9: Number 7.

0: घर में प्रियांश की कंपोजिशन, प्रियांश जोनीता गांधी की आवाज में दिस अटली बटरफुली ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड काफी है ना इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इवन इफ आपने अभी तक शो नहीं देखा है, दिस सॉन्ग इज फॉर एवरीवन एंड टोटली बिलोंग्स ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bindi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaane, jisme ek nayi entry hai. But it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं. ये वो गाने हैं जिनसे हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई है, जिनकी वजह से ये पैरेलल लेन ऑफ म्यूजिक आज यहां तक आ गया है और हम 7 साल से ये शो कर रहे हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज
2: तेरी दीवानी,
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है बिजुरिया बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम. ये गाना सुन के ना बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी सी आ जाती है. मेरी तबीयत थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी इस हफ्ते, मौसम में ही कुछ चल रहा है. सो दिस वॉज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सॉन्ग जो मुझे सुनना था टू री एनर्जाइज माई सेल्फ. सोनू निगम की एल्बम मौसम से ये गाना फ्रॉम द लेट 90s. दिस सॉन्ग रिमाइंड्स अस ऑफ द वर्सेटैलिटी ऑफ सोनू निगम. एक तरफ दीवाना एल्बम में इतने पावरफुल लव बैलेड्स, दूसरी तरफ अ सॉन्ग लाइक बिजुरिया, फुल पॉप स्टार एनर्जी, एनर्जी ठुमका वो अंदाज, गाना सुनते ही पूरा माहौल बन जाता है. इट्स इनक्रेडिबल कि आज 26 साल के बाद भी जब भी सोनू निगम कोई लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, क्राउड सिर्फ बिजुरिया के लिए वेट करती रहती है. एंड ये खुद सोनू निगम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, बिकॉज ऑडियंस तो हम ही है, कनेक्शन तो फील होता है. बट आई बेट यू डिडंट नो दिस दैट 26 साल के बाद सोनू निगम ने इस गाने की जो ओरिजिनल फीचरिंग एक्टर हैं इशिता अरुण, उनके साथ फिर से इस गाने का वीडियो बनाया. हाउ डू यू फील अबाउट दैट वीडियो, जाके देख के मुझे बताना एट आरजे कनिका पर. अब अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कौन कह सकता है इस गाने को 26 साल हो गए, द चार्म इज स्टिल द सेम. सोनू निगम की आवाज में दिस इज बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय इट.

0: डूड, ये गाना सुन के मैं बिजुरिया बिजुरिया का स्टेप करने लग गई थी स्टूडियो में. आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अपनी इमेजिनेशन से इमेजिन कर लो. दैट वाज सोनू निगम की आवाज में बिजुरिया ऑन आ कसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेका पर आओ, कोई भी गाना रेकमेंड करना हो, सजेस्ट करना हो फ्रॉम द 90s 2000s, दोज इंडी पॉप सॉन्ग्स जो आज भी सुन के आपको लगता है कि यार ये वाला गाना तो आज भी फेवरेट है, वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंट डाउन, अगले वाले गाने की बारी है. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई अपना फेवरेट ना बोलूं, बट जब गाना ऐसा होता है ना तो थोड़ा सा बोलने का मन कर जाता है. दैट आई थिंक दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. फरक दी आर्टिस्ट का, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे एंड द सॉन्ग हिट्स ऑल द फील्स ब्रो. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस इज तारे दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: कुर्सी की स्ट्रीट पर,
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों

0: stylish Sherwanis.
1: Shadi shopping ka complete destination. Fashion Queen.
0: Visit today. 1358 Oak Tree Road, Islington.
2: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है.
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: मिटर और की आवाज उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है शीशा. 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल हमें एक ऐसे ट्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ट्रेंड तो चला जाता है पर वो गाना याद रह जाता है. इट्स टाइम टू गिव अ शाउट आउट टू ऐसा ही एक सॉन्ग.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanekar. This is the show jahan hafte ke top 10 pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par. Mera handle is @RJKanekar. Follow karo. Bilkul free hai. Waise bhi mujhe pata hai aap sara time hi internet pe spend karti ho. Because by now you've been following all the internet memes and doing all the internet trends. My favorite part about this is ki jab koi gaana ek trend se itna bada ho jata hai ki hamare shows mein debut kar jata hai, aapki playlist tak आ जाता है. और ऐसे ही एक गाने को हम आज शाउट आउट देने वाले हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट गुच्ची. गाने का नाम है गुची बाय अरूप खान. एंड मे बी आप इस गाने को एक बहुत क्वर्की साइड वॉक से जानते हैं. बाय द वे ये कोई नया गाना नहीं है, ये 2020 का है, 5 साल पुराना, बट एक इंटरनेट एडिट की वजह से हर जगह वायरल हो गया है. एक बहुत फेमस एक्टर पॉलिटिशियन एक कॉलेज इवेंट में स्टेज तक जा रहे थे एंड उनके हिसाब से वहां थोड़ी जगह नहीं थी तो उन्होंने एक क्वर्की सा साइड वॉक मारा, टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था. एंड देन द इंटरनेट डिड इट्स मैजिक. उन्होंने उस वीडियो पे गुची का गाना चिपकाया और वो हर जगह वायरल हो गई. पूरा डांस स्टेप बन गया, लोग उसे गुची वॉक कह रहे हैं. आई नो राइट, मून वॉक सुना था, लेकिन 2026 ने हमें गुची वॉक दे दी. एंड द आर्टिस्ट अरूप खान इज हैविंग हर मोमेंट, जिन्होंने 5 साल पहले ये गाना बनाया था एंड हैड नो आइडिया कि एक इंटरनेट ट्रेंड से हमें गाना इतना पसंद आ जाएगा. सो थैंक यू जेन ज़ी, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. अरूप खान का गुची इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका. एंजॉय.

0: How can you listen to this song and not start doing that step, man? Arup Khan ki awaaz mein, that was Gucci on our special shout out this week. And agar aapko nahi pata ki main kaun se step ke bare mein baat kar rahi hu, to aap kahan hain, aapke charan kahan hain? Oh my god, internet aap tak pahunch nahi pa raha hai, aapka peace kitna protected hai. So mad respect to you, par gana bahut acha hai, so you will keep coming back to it. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. हर्ष नसी की आवाज, हर्ष नसी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है साडी सुन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 3.
1: नंबर 3.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi par, this is the Ghana Indie Top 10. Badi ka naam hai RJ Kanika. Ye wo show hai jahan hum hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown aapke liye lekar aate hain. Yani ki weekly pop report card. Connect with me Instagram par jao, mera handle is @RJKanika. Follow karo, koi gaana suggest karna ho, bindaas aake hit me up. Follow karna bilkul free hai. It's time for me to take you to the top 2 songs of the week. But usse pehle, a quick recap right from the top. Shuruaat hi countdown ki ek nai entry ke saath hui Banjare ka Barsaat debuts on Gaana number 10.
2: Pyare sa milna nahi, kon mere jisa chahegi.
1: उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9. ज़ारा खान एंड स्केल्स का मूव बॉडी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 8. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7. जुनीता गांधी गर्वित प्रियांश का काफी है ना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6.
3: तू मेरा हो गया इतना ही काफी है.
1: देन फरक का तारे ऑन गाना नंबर 5. मिट्टा रॉर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. हर्ष नुसी का साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. इस हफ्ते के टॉप 2 गानों में कुछ तो रीशफल हुआ है. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके राघव कौशिक का गाना, गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, द सॉन्ग इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे, दरमिया इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 22 हफ्तों से बरकरार, पिछले 3 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन को रिटेन करके बैठा है, बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, स्टिल ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने दरमिया ऑन नंबर 2, बैरन ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep Cow to Jano.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 6 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
2: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
4: कुछ साल पहले तक बॉलीवुड को लगता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए वो उसे पता है। फिर ऑडियंस ने एक दिन सीधा कह दिया, नहीं यार, अब तुम नहीं, हम डिसाइड करेंगे। और तब से कुछ बदला है। धमाल 4, कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में अपनी फेमिलियर दुनिया के साथ अब भी चल रही हैं, लेकिन साथ में यू गॉट फिल्म्स लाइक टॉक्सिक, आवारापन, हैवान, धुरंधर भी। ऐसी फिल्में, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें शायद 5-10 साल पहले कोई फिल्म मेकर पिच करने से पहले दो बार सोचता। और बात ये नहीं है कि लोगों ने कमर्शियल सिनेमा को रिजेक्ट कर दिया, बात सिर्फ इतनी है, अब ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझकर एक्सेप्ट करने का जमाना गया। आज फिल्म मेकर रिस्क लेता है तो जनता उस रिस्क को नोटिस करती है, कभी गले लगाती है, कभी सीधा रिजेक्ट कर देती है। और शायद इसलिए धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती। जैसे दिल चाहता है ने एक वक्त पर हिंदी सिनेमा का एक नया पन्ना खोला था, शायद धुरंधर भी एक पेज टर्नर है। और आज का पहला पन्ना खुलता है नंबर 20 पर, जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलर्स फ्रॉम टू रन धर
5: नंबर 20।

0: यार सीक्वल बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धुरंधर गॉट इट राइट एंड समहाउ इवन धमाल 4 गॉट इट राइट। उसका गाना चटनी इज ऑन नंबर 19 दिस वीक, लेकिन चटनी के ठीक ऊपर है इस हफ्ते का गाना नंबर 18, विच इज हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू का गाना इश्क कमीना, ओरिजिनली पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय। सो आई डोंट नो कि इस गाने की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट कितना इन दोनों को जाता है मोर देन दिस फिल्म बेबी डू डाई डू, लेकिन नंबर 17 पर जो आ रहा है उसमें एक अलग ही वॉर्म्थ है, शान, बस शान की आवाज।
1: जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ।
0: कुछ आवाजें गाना नहीं गाती, सीधा स्क्रीन पर एक्टर को खड़ा कर देती हैं।
1: सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती।
0: सैफ अली खान,
1: पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए।
0: सैफ अली खान तुम्हें

0: उड़ता हूँ।
1: फिर से सैफ अली खान, म्यूजिक हटा दीजिए, अरेंजमेंट को भी हटा दीजिए, सिर्फ शान की आवाज, फिर भी सामने वही सैफ अली खान। दिल चाहता है हम तुम सलाम नमस्ते तारा रम पम। शान और सैफ एक ऐसी जोड़ी जो बॉलीवुड को थोड़ा हल्का, थोड़ा मासूम, थोड़ा खूबसूरत बना देती थी, और अब लगभग 20 साल बाद दोनों फिर साथ आए हैं। बस इस बार सैफ हीरो नहीं, पापा हैं, और शान की आवाज भी कुछ वैसी ही है, सिर्फ कहानी बड़ी हो गई है। नंबर 17 पर डेब्यू इन दिस वीक ऑन द मिर्ची टॉप 20, ये है मेरे हीरो है वो, हैवान से प्रीतम दा का म्यूजिक।
2: नंबर 17,
3: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई,
4: लिख रहे हो ना,
3: तुम भी गाओ।

0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Murga, murga. Nabir wala murga.
3: Mirchi murga.
4: Hello.
5: Hello. Anshika. ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
4: हाँ जी,
5: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
4: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
5: संतोष. संतोष
4: संतोष
5: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
4: नहीं, कोई बात नहीं.
5: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
4: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू?
5: आई एम एंट्रोनोर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एम्प्रोटोन एम्पो एंट्रोपोन एंट. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है. अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च. गॉड ब्लेस यू. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी. हंस हंस क्या?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Inefficient,
15: very complex,
16: clumsy or
17: confusion ही confusion.
18: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.
0: Only on Mirchi. It's hot.
19: Number 16.

0: कहर का अपना मैडनेस है, धमाल 4 का अपना यूनिवर्स है, और बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनके नाम के साथ फ्रेंचाइज लिख दो तो जनता टिकट खरीद ही लेती है। अजय देवगन के पास सिंघम, गोलमाल, दृश्यम है, अक्षय के पास हाउसफुल, हेरा फेरी है, लेकिन इमरान हाशमी यार वो बंदा तो खुद में एक जॉनर है। आवारापन, राज, मर्डर एंड देन यू गॉट जन्नत। जन्नत का मैजिक थोड़ा अजीब है, ना सुपर हीरो, ना स्पेक्टिकल, ना फैमिली सागा, बस एक इम्परफेक्ट आदमी, एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी और ऐसे गाने जो फिल्म खत्म होने के बाद भी जिंदगी में चलते रहे। अब आवारापन की कामयाबी के बाद जन्नत 3 की बातें हो रही हैं, लेकिन जन्नत 3 का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई नया गाना एक पूरी जनरेशन को वही फीलिंग दे सकता है, क्योंकि जन्नत की कहानी याद रह गई लेकिन जरा सा ने उस कहानी को जिंदा रखा। विशेष फिल्म्स हैव टेकन द रिस्क ऑफ मेकिंग जन्नत 3। आई वांट टू से गुड लक, क्योंकि एक नया जरा सा बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस आदमी के एक और गाने पर हम लौट रहे हैं, क्योंकि हम तो इस गाने पे फिदा हैं, नंबर 14 पे, तो फिर आओ फ्रॉम आवारापन 2।
1: नंबर 14,
2: तो फिर

0: Sahin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Beep cow to jano.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

आरी आरी सालों से एग्जिस्ट करता था, लेकिन धुरंधर ने उसके अंदर एक नया मीनिंग भर दिया। अब जब भी ये भीड़ बजती है तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, रणवीर सिंह की, बदले की आग में पूरी तरह गोइंग बिजर्क। नंबर 13 पर इट्स आरी आरी फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज। और शायद सिनेमा में गाने की असली पावर यही है यार, कभी फिल्म किसी गाने को अपना बना लेती है और कभी कोई गाना फिल्म से बाहर निकलकर अपनी दुनिया बना लेता है। अनिरुद्ध रविचंद्र का बनाया एक ट्रैक द राग ऑफ रिवेंज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये फिल्म के लिए बना ही नहीं था, कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म डीसी नाम की भेजी जा रही थी और उसके लिए ये ट्रैक एक लास्ट मिनट एडिशन था, लेकिन फिर इंटरनेट ने इसे पकड़ लिया।

gym edits, anime fights, gangster montages, transformation videos, vocal challenges. 48 ghante mein ye gana ho gaya totally viral. और सबसे क्रेजी बात पता क्या है, इस गाने को किसी फिल्म की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी कभी एक थीम सिर्फ फिल्म का साउंड ट्रैक नहीं होती, वो फिल्म का एटीट्यूड बन जाती है। लेकिन अब इसी एटीट्यूड से बिल्कुल एक अलग फ्लेवर की तरफ जाने वाला हूं मैं, बिकॉज नंबर 12 पर है द मेडिटेरेनियन फील ऑफ माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। नंबर 12।

0: शरारत को सुनते ही एक बात याद आती है कि धुरंधर के बाद रणवीर सिंह गायब हो गए। वही रणवीर जो कभी कैमरा से बचकर नहीं चलता था, इंटरव्यूज, इवेंट्स, साउंड बाइट्स, हर जगह रणवीर होता था। और फिर अपने 16 साल के करियर की सबसे बड़ी कामयाबी के बाद सबसे खामोश रणवीर सिंह। लेकिन 8 महीने बाद रणवीर फाइनली बोल रहा है।
1: Brother was not an easy film to mount. It was not an easy film to execute. There were several challenges. डंके की चोट पे जाके बैक करना कन्विक्शन के साथ कि अगर ये सही पड़ गया then we will be breaking new ground.
2: I have to say I was given all the love, all the support and all the encouragement even at a time when my movies were not doing well.
1: Career है, ups and downs होते रहते, but to have received that kind of support meant a lot to me. It's nothing short of a blessing.
0: शायद धुरंधर सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये उस वक्त आई जब रणवीर को एक बार फिर याद दिलाना था कि वो क्या कर सकता है। वही लड़का जो बैंड बाजा बारात से आया था, लुटेरा में टूट गया था, बाजीराव बना, गली बॉय में फिर जन्म लिया। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत एक तरह देखा जाए तो वो होती है रामलीला के साथ, क्योंकि उसमें कुछ बदल गया। संजय लीला भंसाली ने उस रणवीर को परखा जो सिर्फ स्टार नहीं एक्टर बनने की भूख रखता था, और आज मेरा पिक ऑफ द वीक उसी रणवीर का एक और रंग है। अरिजीत की आवाज में वो इश्क जो शोर नहीं करता, लाल इश्क।

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzelin।

इमरान हाशमी की एक खूबसूरत बात है, उन्होंने कभी अपनी इमेज को अपनी बाउंड्री बिल्कुल नहीं बनने दिया। शायद इसलिए सिनेमा में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तब पैदा होती है जब कोई एक्टर अपनी ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। शाहरुख खान ने डर में हीरो की जगह ऑब्सेशन को चुना, अजय देवगन ने खाकी में अपनी इमेज का एक अंधेरा दिखाया और सैफ अली खान ने ओमकारा में लंगड़ा त्यागी बनकर पूरी तरह इस सो कॉल्ड इमेज की धज्जियां उड़ा दी। नंबर 9 पर है साड़ी, धमाल 4 से, एक ऐसी फ्रेंचाइज जहां हम जानते हैं कि दुनिया कैसी होने वाली है। लेकिन हैवान नाम की जो फिल्म आ रही है उसमें अक्षय कुमार को एक सीरियल किलर के स्किन में देखना, सैफ अली खान को एक ऐसे ब्लाइंड मैन के रूप में देखना जैसे सेंसेस ही उनकी ताकत हैं, और प्रियदर्शन साहब को हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला की कॉमेडी से निकलकर एक डार्क नुआर फिल्म की दुनिया में जाते देखना, ये सिर्फ जॉनर चेंजिंग नहीं है, ये इमेज के खिलाफ जाना है। और जब बड़े स्टार्स अपनी ही पहचान को चैलेंज करते हैं ना, तब फिल्म देखने की वजह सिर्फ कहानी नहीं होती, क्यूरियोसिटी बन जाती है कि ये आदमी अपने आप को कितना बदल सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं अपना रास्ता थोड़ा सा बदल रहा हूँ, क्योंकि नंबर 8 पर इंतजार कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया। नंबर 8।

तबाही, नाम ही काफी है, लेकिन कितनी टॉक्सिसिटी फैलेगी सिनेमा स्क्रीन्स पर, वेल आई डोंट नो। लेकिन इसी मैडनेस के बीच एक गाना और है जो सुनने में वैसे लव सॉन्ग लगता है, जैसे एक लड़का अपनी महबूबा के लिए ये गाना गा रहा हो, लेकिन शायद ये गाना वैसा है नहीं। तेरा मेरा रिश्ता 2007 में इमरान हाशमी एक ऐसे इंसान की तरह गा रहे थे जो किसी इंसान से नहीं अपने खुदा से सवाल कर रहे थे, और अब 19 साल बाद आवारापन 2 में वही रिश्ता वापस आया है। बस एक चीज बदल गई है, पहले इंसान खुदा को बुला रहा था, इस बार खुदा इंसान से बात कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है। मिथुन के म्यूजिक में खुदा अक्सर एक किरदार की तरह आते हैं, कभी दूर, कभी खामोश, और कभी एक टूटे हुए इंसान के बिल्कुल सामने। मर्डर 2 का ए खुदा याद कीजिए।

0: वही डेस्पिरेशन, वही सवाल, वही यकीन और शक के बीच का वो एक पल। शायद इसलिए तेरा मेरा रिश्ता को 2007 में सुनना और आज 2026 में सुनना दो अलग अलग अनुभव है, टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कभी कभी ये गाना दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, इंसान और उसके खुदा के बीच की बात होती है। और 19 साल बाद शायद उस बात का जवाब भी आ गया है। तेरा मेरा रिश्ता, आवारापन टू,
1: नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: जयदीप।
2: हाँ जी
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या के यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे।
3: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की।
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
3: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
2: तू कहाँ पे है? तू
3: बैंक में।
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर आप लोग सारा ने।
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुली नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू तू फोन रख भाई, तू मेरे पास कॉल मत करियो।
3: ठीक है मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
7: 13 सितंबर रविवार
6: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
12: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
13: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
14: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
12: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
14: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
15: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
19: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
18: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
4: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है। मिर्ची सुनने वाले always खुश।
20: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
21: के साथ, only on Mirchi. It's hot.

ऊंचा लंबा कद यार टाइटल ही काफी है, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी आए जिनकी पहली फिल्म से ही उनका कद जो है वो काफी ऊंचा हो गया था, लेकिन उसके बाद हर फिल्म उसी के नीचे खड़ी नजर आई। आदित्य धर, फ्रेश ऑफ द सक्सेस ऑफ धुरंधर, उन्होंने इससे पहले बनाई थी उरी, एक फिल्म जिसको देख के लगा कि यार ये आदमी कहां जाएगा, लेकिन फिर आया 6 साल का इंतजार और जब धुरंधर फाइनली आए तब समझ आ गया शराब गए नहीं थे, he was cooking। लेकिन इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभिनव कश्यप, दबंग में उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई थी, एक पूरा फ्लेवर क्रिएट किया था।

लेकिन उसके बाद उन्होंने बनाई बेशरम। फिल्म नहीं चली एंड उसके बाद कैमरा के पीछे अभिनव भी गायब हो गए। देन देयर इज तरुण मनसुखानी। दोस्ताना नाम की फिल्म जो 2008 में आई थी, एक अर्बन नया बॉलीवुड मिला। फिर ही मेड अ फिल्म कॉल्ड ड्राइव और वो मैजिक दोबारा नहीं बना। तो सवाल ये नहीं है कि पहली फिल्म फ्लूक थी कि नहीं, सवाल ये है कि पहली फिल्म के बाद फिल्म मेकर अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करता है। कोई भी डायरेक्टर वन हिट वंडर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती है कि उसके बाद हर फिल्म का हिसाब उसी से होता है। लेकिन दोस्ताना की वो दुनिया यार एक गाने में अब भी बिल्कुल फ्रेश लगती है। जाने क्यों, क्या गाया है विशाल ददलानी ने। इट इज अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन और ये बन रहा है मेरे इस हफ्ते का रिवाइंड ट्रैक। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
6: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
7: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
6: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
8: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
16: नंबर 3,
17: लेट्स गो।

कभी कभी किसी आवाज की कीमत तब समझ आती है जब हमें पता चल जाता है कि शायद अब वो आवाज रोज नहीं सुनाई देगी। ये आवारापन इज ऑन नंबर टू, लास्ट वीक इट वॉज ऑन नंबर वन, लेकिन आवाज वही है अरिजीत की। और अजीब बात यह है, अरिजीत अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन जाते जाते भी ऐसे गाने दे रहा है जो हमें उसे जाने नहीं देना चाहता। और शायद इसलिए उसका गाया हुआ एक गाना थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, खासकर उसकी कही हुई, सॉरी गाई हुई एक लाइन।

15 साल पहले जब अरिजीत ने ये लाइनें गाई थी तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत स्टैंजा है, लेकिन आज सुनता हूं तो लगता है जैसे किसी ने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया था कि एक दिन ये लम्हे गुजर जाएंगे। यार इस बीते हुए 1.5 दशक में हमारे बीच कितनी आवाजें आई हैं, लेकिन मेरी जेनरेशन की खुशियां, उनकी तन्हाइयां और उनके हार्ट ब्रेक्स, अरिजीत की आवाज ने इन सबका सिर्फ साथ नहीं दिया, इन्हें डिफाइन किया है। और अब जब एक दौर धीरे धीरे खत्म होने की दहलीज पर पहुंच रहा है, शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि अरिजीत की कमी महसूस होने से पहले ही उनकी याद हमारे पास आ चुकी है। और आज उस याद का एक और पन्ना मैं आपको सुना रहा हूं, बिकॉज दिस सॉन्ग हैज वंस अगेन क्लाइम टू नंबर 1। अरिजीत विद अनदर मेमोरी, दिस इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और एक बार फिर गहरा हुआ ने सबसे ऊपर चोटी पर अपनी जगह बना ली है। अरिजीत सिंह की आवाज, धुरंधर का जुनून और मिर्ची टॉप 20 का एक और एपिसोड। बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक सुरेम ओवर एंड आउट।
1: सुरेम के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: It's 7:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Radio Mirchi. Radio Mirchi. It's hot.
3: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Food?
7: Yes.
6: Shopping?
7: Yes.
6: Entertainment?
7: Double yes.
6: Or health fair?
7: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
8: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
13: लिसनर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.